विश्वास नहीं आता, ये विश्वास आ जाए तो हुक्म क्यों ना मनी, हुक्म नहीं मन, मत्था जरूर टेक दे पर हुक्म मत्था टेके या गुरु, मत्था तो तेरे के टेकांगे पर तेरा हुक्म नहीं मन। ये हुक्म नहीं मनिया तो जीवन परवान नहीं, ये मत्था टेक देता है फिर पीछे की रह गया, ये मत्था टेकिया है तन गुरु का हो गया, फिर जो गुरु का हुक्म है ठीक, ये गुरु का हुक्म है रहनी रहे सोई सिख मेरा सतमच।

वस्तु मिल जाए फिर साझा बैठ गया सब नाम को सीता सब कीर्तन कीर्ता से सुनिया सबला हो जाएगा। करो अर्दास जिन्हें तस्वीरों कुटी है और पानी जरूर मिली जिन्हें तस्वीरों कुटी है

पाने मिले जेने खोजिए है उन मालिक है जिसने मन जोड़ के अरदास की है ओदी अरदासा मेरा धन गुरु नानक पड़े आप पहले सेवक बनेगा पीछे प्यार ना सारे बोलो।

सतसन का रखा उत्सुक कर कर जीवा नानक नाम महारस लिखा अनदिन मन कर पुस्तक कराया करो भाई गुरु जी पुस्तक मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सदा सुहेला पुस्तक गुरु चंगा कर दिता है ना ओदे विच भी रह के धन गुरु नानक कहते जी वाहिगुरु ने पुत्र की दात दी है पुत्र नाल भी प्यार करो पर ओदे नाल प्यार जरूर करो जिन्हें पुत्र बख्शे आखिर जी एक गुरु बाबा जी कह लगे निंदा करनी है अपने करो उस्तुत करनी है गुरु दी उस्तुत करो ये गुरुमुखता है ये गुरुमुख दी चाहिए तो प्यारे साध संगत यह जहां वचन ना बोलिए जिदे नाल किसी का मन दुख है हरीब जी ने किया सबना मन मारक ठाहण मूल मचंगवा जे तो प्रिया जी सिके तो न खरी गुरु नानक का सिख जेदा गुरु इतना मिठा हो सिख तो कदे नहीं तोड़ा न प्यार परे बचन चंगे बचन करो भाई चंगयाई दुनिया में वंडनी नहीं सिख दी ये ड्यूटी ड्यूटी है आप जपो अमरे धाम की।

निर्मूल कीरा आनंद गुणी जगीरा अनहद पाणी पूंजी संतन हथ राखी मरदानिया के ये संबोल वस्तु ने ना मुल बन इस वस्तु का मुल बन पर उन्होंने कीर्तन का पूरा नाम प्राप्त नहीं होता जिन्होंने कीर्तन नू रबी दास समझ के इसका आदर सत्कार किया है मरदानिया उन्होंने चोरियां मालिक पर मरदानिया है कि महाराज एक सौ रुपये भी है अजू कह लगे आप करनी है मरदाने जा वापस दे महाराज अमू बना के मरदाने ने किया सदगुरु मसा मसा माया का मूह वेखे है तुम कहते हो वापस अजूर कह लगे मरदानिया आप किसे चुकी फिरांगे मरदाने ने कहा महाराज तुम थोड़ा चुकनी मरदाना आप ही चुकी फिरेगा इतने जाओगे दो बजे कीर्तन सुनावा हूं थानू कदे नहीं कहांगा महाराज भुख लगी अजूर कह लगे जी मरदानी असि मालिक के हुक्म जिथे जावे मालिक आपे प्रबंध करेगा वापस दे पले चटू न बंदे पंछी से दरवेश और जिन्होंने तकवा रखता तिना रिजिक गिरी गांठनी बंधते जमे देता खाए गोविंद ताके पीछे गिरे मत भूखे दे जाए एक सौ रुपये की थैली वापस दी सात राज के अंदर और प्यार आया नौकर नु बुलाया धक्का कोई रबी दूर आया है और सौ सौ के मन धरे है प्रसादे का थाल परोसना है मिठाई भी रखना है दुध का दड़वा भी भरना है चिट्टा रुमाल पा के पूछा दे मैं दुकान बंद करके आऊंगा हाथ उस दादे के दर्शन करना चाहता अगर कब पहुंच गए पहला दिन के पदार्था का थाल रखिया मत्था टेकिया हजूर ने अभी उसकी ना तकिया सिर को नजर करम तिरकार नानक नगरी अगर केड़िया झोलियां पर उठिया मस्ती बैठा चाहता है इधरों सारे भी आए अजूर के दर्शन किए मन खरे हाथ जोड़ के किया गरीब नवाज दुनिया को उतारवा रहा दुनिया को दाता देने वाले मेरी झोली की है अजूर कहने लगे सारसराय की चाहना है साक्षा दुनिया भी दाता सारी है हीरे दान पन्ने पुखराए अंदौल सोना चांदी सब कुछ है पर गरीब नवाज सब कुछ होंगे अजे मन का खप्पा पूरा नहीं होया खुश ही बने मन नहीं हो मन संतुष्ट नहीं हो मन तो संतुष्ट ही नहीं हजूर कह लगे हां सारसराय मन का भोजन होर है मन ये नाल नहीं रजना मंत्र मन पदार्था नाल नहीं रजना गरीब नवाज फिर करो कृपा अजूर ने सोचिया जरा तकिए अंदरों बोलता है कि भर अजूर कह लगे सारसराय तू देरी नाल आया है जेडी दात सी ना वो तेरा नौकर ले महाराज फिर मैं अजूर कह लगे जे तो भी दात लेनी है तो नौकर दे चरना से है ऐसी कसौटी इम्तहान देखना से भी अंदर निमरता लेके होवे तो नहीं पर सारसराय का जरा मन रूपी चोलिया सी वो बिल्कुल सफेद अंदर श्रद्धा रो पिया गरीब नवाज ये तो मेरा बच्चा है पर जे तुम आखो तो मैं थोड़े कुत्तियां ने पैर चमका सकता तो दास बख्शो जेदे नाल मेरे मन भी सुख दूर हो जाए अजू ने बख्शी पीती सारसराय जरा नेड़े हो दात मिलन लगी है तुम भी मन करके नेड़े हो जाओ बख्शिश होने लगी है हजूर ने सारसराय के सिर से फिर प्रयास रखिया अभी उसकी की नाल तकिया किया सारसराय जब सतनाम कर हुक्म मस्त कहा सर मार कड़िया बरियाइया सह सुखे नाम नाम की दात जो जो सारसराय सिमरन नाल जुड़ता है त्यों त्यों मन सुखी होता है सिमर सिमर सिमर नाम जीवा तन मन होए निहाला चरण कमल तेरे तोरे तो सीमा मेरे सतगुरु जी तो अज सारसराय दोरियों कर दिखा मेरे सतगुरु नानक ने क्यों ना पे अज खास पूर्व भाषी का दिन आखोशी ही पहले सारसराय दोरियां पर गई उत्ते ही रहमत सूरज की किरण जिथे जाएगी अंधेरे को दूर करनी जाएगी गुरु की मेह जिथे जाएगी चोरियों पर तो आओ प्यारी आप अनुभव करें।
सर्वत्र माई साई जो अमृत ले रही है।

गुलाब दे फूल खिड़दे ने, जद पानी कट जावे ता फूल दे पत्ते कुमला जांदे ने। इसे तरह अज तेरे ते जवानी है, बुढ़ापा आवेगा तेरी ये जवानी कुमला जावेगी। थोड़े दिन ने बंदगी कर ले, क्यों के पता नहीं मौत ने केड़े वेले आना है।

जे पूछिए भाई तू क्यों रोना है, ते रोन वाला कहेगा मेरा कुछ सज्जन मेरा प्यारा सौंगे है। टिकया उठ पवेगा रोन की केड़ी लोड़ है, ता जवाब दिता उस सुता है हो जी जगह है जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया, सज्जन मेरे रंगले जाए सुते जीरान, जीरान कहते ने कब्रस्तान, कब्रस्तान जाके सौ गए ने जिथों कदी कोई उठ के नहीं आया। ऐ भाई एक दिन सारिया ने उत्थे सोना है, फिर क्यों ना एहो जे काम करी।

साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी। साध के संग मुख उजल होत, साध संग मल सगली खोत। साध के संग मिटाए अभिमान, साध के संग प्रगटाए सुज्ञान। साध के संग बुझे प्रवनेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध के संग पाए नाम रतन, साध के संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बने कौन पुरानी, नानक साध की शोभा प्रभु महे समानी। साध के संग अगोचर मिलाए, साध के संग सदा प्रफुल्ल। साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सबकी देन, साध के संग मनोहर बहन। साध के संग न कथू तावे, साध संग अस्थित मन पावे। साध के संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस से होनी बैर, साध के संग न भीगा पैर। साध के संग नहीं को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध के संग नहीं हो ताप, साध के संग तजाए सब आप। आपे जाने साध बड़ाई, नानक साध प्रभु बन आई। साध के संग न कभू तावे, साध के संग सदा सुख पावे। साध संग बस अगोचर लहे, साधु कै संग अजर सह। साध के संग बसै थान ऊंचे, साधु कै संग महल पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म, साध के संग केवल पार ब्रह्म। साध के संग पाए नाम नितान, नानक साधु कै कुर्बान। साध के संग सब कुल उतारे, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारे। साधु कै संग सोतन पावे, जिस तन ते सब को वरसावे। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध के संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम, नानक साध के संग सफल जन्म। साध के संग नहीं कछ काल, दर्शन पेट तो होत निहाल। साध के संग कलुखत हरै, साध के संग नरक पर हरै। साध के संग इहा हुआ सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला। जो इच्छे सोई फल पावे, साध के संग न बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध हृदय बसै, नानक उदर साध सुन रसै। साध के संग सुनो हर नाओ, साध संग हर के गुण गाओ। साध के संग न मनते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै। साध के संग लगे प्रम मीठा, साधु कै संग कट कट ढीठा। साध संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध के संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने ते ता बख्याने। साध की उपमा तै गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ से मूंछी।

जब नामे भगत ते आया, रविदास भगत के कारने पाथर नदी तराया। तन्ना जट जब मरने लगा, पत्थर स्यों प्रगटाया, बन के आप कबीर जुलाहा,

एक भय है को ना सके पहचान, नाम जप के राम ते कबीर विच कोई भेद ही ना रह गया। बल्कि कबीर जी कहंदे हन के कबीर मन निर्मल भया, नाम जप के जदो मन निर्मल हो गया ता मैनू रब लभण दी लोड़ ना पई, रब मेरे मगर मगर तुरया आया, मैनू लभदा तुर

गुरु नानक महाराज जी दे आगमन दिन लंके गए, गुरु दी गोद विच बैठ के कथा कीर्तन राही जुड़न दा यत्न कर रहे हो। अद्धी पंक्ति है कल तारण गुरु नानक आया, ते इस तो पहली अद्धी पंक्ति है भया आनंद जगत विच। सारे चाती पायो, साढ़े भी हिरदे रूपी जगत विच अजे आनंद आया है कि नहीं। भया आनंद जगत विच कल तारण गुरु नानक आया, साढ़े भी हिरदे रूपी जगत दे विच आनंद आया कि नहीं। जे नहीं आया तो किवें आएगा। मैं मूर्ख की केतक बात है कोट परादी तरियारे गुरु नानक जिन सुनिया पिखे से फिर गरवास न परिया। गुरु नानक नु सुनो फिर पिखो। वो लड़ीवार प्रकरण एक निका जिहा शुरू होया है। पाई फिरना ते पाई जोध, ये दोवें सिख गुरु नानक बाबा जी को आए ने ते अध्यात्मक मंग मंगी। परमेश्वर की प्राप्ति हो जाए। नमक ना बसरों की दात मिल जाए। मन टिक जावे। छे बचन गुरु नानक साहब ने इना दी चोली च पाए ने। तीन बचन आप जी सरवण कर चुके हो, अज चौथे बचन दी वारी है। महाराज जी सेवा लैन सात संगत अवल ते कोई गाहक ही नहीं बनता। आपां भी गाहक बनना है। एक एक चीज नू सुन के अपने ते टालना है। सारा जगत तुहानू अपना नजर आन लग पेगा जदों परमेश्वर की प्राप्ति हो गई। सारे अपने, सारी जगत अपनी, जगत अपना है। किनू धोखा दिया, किदे नाल रफरी करा, किदे नाल बुरा करा, किदे नाल माड़ा करा। उस स्वाद नू कोई दस नहीं सकया।

वेद पुराण पुकारन पोथियां नाम बिना सब कूड़ गाली होशी नाम तो बिना मनुख सखना है इसलिए महाराज ने नाम अमृत सानू बख्शन लई सब तो पहला पंज बाणियां दा अमृत खंडे बाटे दा अमृत तैयार करके साडे मुख विच पाया अमृत ते आख्या ऐ गुरु के सिख हुण जदों तू गुरु के शब्द दी कमाई करेगा ना तेरा मन निर्मल हो जाएगा जितनी कोई मुशक्कत कालेगा आप ही नहीं सारा कुटुंब ही तार के दरगाह नू लै जाएगा इसलिए महाराज बख्शिश कर रहे हैं भाई अमृत पियो ये बचन अपने पले बनांगे।

ये बेनती कर रहे भीखम शाह जो जात का मुसलमान है पंजाब की धरती का रहण वाला आज भीखम शाह जदों सुबह नमाज अदा करन लगा भीखम शाह दे नाल सारे मुरीद भी सन और जिस वेले पश्चिम वाल भीखम शाह नमाज पढ़न वास्ते खड़ा होया तां भीखम शाह नूं अदुती प्रकाश दे दर्शन होए तां भीखम शाह ने सजदा पश्चिम वाल करन दी बजाए पूर्व वाल कीता सारे मुरीद पुछन लगे आ भीखम शाह जी आज तक तुसी रोज इतनी उम्र बीत गई सजदा पश्चिम वाल करके नमाज अदा करते हो क्योंकि हर एक मुसलमान पश्चिम वाल सजदा करके नमाज अदा करता ते आज तुसी पूर्व वाल क्यों सजदा कीता तां भीखम शाह कहन लगा जिस खुदावंद नू मैं रोज पश्चिम वाल नमाज अदा करता सां आज उसने पूर्व दे विच पटने शहर दे विच जन्म लिता है सात सगत बोलो श्री सारे मुरीद हैरान रह गए भीखम शाह कहन लगा हां जे मेरे ऊपर विश्वास नहीं तां फिर सारे चलो पटने दी धरती ते किथे बिहार दी राजधानी पटना किथे पंजाब पटियाले दे कोल रहण वाला भीखम शाह अपने मुरीदां नूं लै के उस वेले कोई रेल गड्डियां दे साधन नहीं सन एक घुड़सवारी दे साधन होया करदे सन अपने मुरीदां नूं नाल लै के कितने दिन यात्रा करदा होया जदों भीखम शाह उस स्थान ते आ पहुंचिया जिथे माता गुजरी दी कुख विचों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह दे घर गोविंद राय जी प्रगटे।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार भाई लैणे दा भी, क्योंकि पता सी कि आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे होए, बिना परीक्षा लिते होए, आ किवें पता लगे कि इस गद्दी ते बैण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह, मगर मगर संगतां, मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया, साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती, चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन वो चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए, फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती, सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे, चांदी ते नहीं फिसले, और सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नूं छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के घरां नूं चले गए। साहब जी फिर खड़ा जागे गए, फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है। तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात झोलियां विच भर के अपने अपने घरां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे भाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए, सोने चांदियां दे ढेर लाए, हीरे जवरातां दे ढेर लाए, आ सारे ही झोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए, तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां, कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो झोलियां भर के घरां नूं चले गए हन, इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है, उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नूं खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने भाई लैणे नूं कोल सदया,
ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਕੋ ਅੰਗ ਸੇ ਲਗਾ ਕਰ ਅੰਗਦ ਕਰ ਦਿਆ। ਅੰਗਦ ਥਾਪਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਰਸ, ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ, ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।

दृष्ट दर्शनी शब्द श्रुत ही बुद्ध बल ही सुतो हस्त न पावली चित्त ही।